भगत जना के मन बिसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नागमनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्ना कोल सुखां दी मनी सुखमनी है ना, उस कर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते, घर परिवार दे भी कलेश मुक जाते ने, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा है। भगत जना के मन बिसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी वस जाए ओ भगत बन जाते। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है। भुल चुक दिखी मां, गुरु बख्शिश करे रहमत करे तुहाडे साडे ते सभना ते, चढ़दी कला सब दे कारज रास। भाई लखविंदर सिंह जी ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

नानक रहन रजाई। आसा महला पहला, सुन वड्डा आखै सब कोए, केवड़ वड्डा डीठा हुए, कीमत पाए न कर।

रहाउ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वडियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वडियाईया, तुद विन सिद्धि किने न पाईया, करम मिले ना ही ठाकर हाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसे क्या चारा, नानक सच सवार नहारा, आसा महला पहला, आखा जीवा विसरे मर जाऊं, आखण औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चली यह दुख, सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाई रहाओ, साचे नाम की तिल वडियाई, आख थके कीमत नहीं पाई।

जिन दिन करके कीती रात खसम विसार रहते कमजात नानक नावै बाज सुनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम की रे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम परदास मेरे मीत गुरुदेव मुकौ राम नाम परगास गुरमुख नाम मेरा प्राण सुखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम

शैल पत्थर में जंतु पाई, ताकर जुक आगे कर तरिया मेरे माधु जी। सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर, काहे मन भाओ करिया। ऊडे ऊडा वैसै कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कवन खिलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिर जनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावह संतोह जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक को पुरख समाना। एक दाते एक पेहारी जी, सब तेरे चोज विडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हौ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुकत भये जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी, तिन का भाओ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन

तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जाड़ोई। आसा महला चौथा तू।

तेरी तू सब नित्याया, जिसनों कृपा करहे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुदे आप

जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संजम धर्म

त्रास निवरिय, वो जो सदा हमारे पछाओ, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा, राख ले हो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा,

सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, चीठी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचान, घट घट के पट पट की जान, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत

जो निकट नह ऐ है रक्षा हुई ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट टरह तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु ताकि ताप तनक मह हरिहु रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई दुष्ट छाह छव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा जिन

नाहीं घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम धार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा

कुपुंचै तिसका हुए उदारु। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उतारु। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारु।

पौड़ी, तिथै तू समरथ जिथै कुए नाहि, उथै तेरी रख अग्नि उदर माहि, सुनकै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहि। पौजल बिक

शासन गए जी। बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाजपति पाचे दसवीं प्रेम भगवती सिमर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकिर गुरते अमरदास रामदास से वे सहाय। अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय से सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर कर्ण उन्होंने दयावत आए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय। दसम पातशाह के पुत्र आत्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पारदार तैन करके घर तक बोलो जी वाहेगुरु। गरीब नवाज आप जी ने पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हड्डियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन छकिया देख चलाई ते वाहे देख निड़की चादना प्यार सत्यारा की कमाई दते अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म ये सही दिता बंद बंद कटवाए कोपरियां लवाइया चरखियां चढ़े आर नचराए गए गुरुद्वारे सियावा कुर्बानी की धर्म नहीं आ रहा सी किसी तरीके सत्संग निभाए ते ना ही कमाई दाते अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। पंजाता गुरुद्वारे अंदर ते अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेता हुआ चित आमण का सदका सर्व सुख हुआ जहां जहां गुरु खालसा साहब का नशहर आए देख देख की फतेह बृज की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म क्या जाकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा का मन नीवा मत पीछे मत पत के रखे आप वाहेगुरु। गुरु की बनवाज पंथ सदा से आई दता जो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब धुर गुरुद्वारे गुरुता जिन्हों तो आप जो पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दिता दसिया संभाल दता अपने खालसा जी ने बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु दतार जियो दोए कर जोड़ करो अरदास कुछ भावे दाने रास। ये गरीब नवाज जी आदि के चरण कामना जरदास सिंह जी आपने कृपा की बख्शिश की है आदि चरण पितर गवाणी सुखनी साहब संपूर्ण पाठ दतार इस वे संध्या समा जान के आपके चरण सोधार रह साध पाठ की कृपा करो हुई भुला चुकों की माफी बख्शो पढ़ी है बाणी सोच के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतों के हृदय इंसान की पैदा करो जी अगो तो शोधते पितर बाणी जारी बल बुद्धि बख्श करो। गरीब नवाज इस खुशी में आप जी बख्शिया दातों विचों पितर गुलाब शब्द जगह तैयार कर हाथ दतार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद साहब संगत रसना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। गरीब नवाज कृपा करो आज बख्शिया दाता जी लंगर की तुर सवारी प्रवान करनी अद्ध चरना सेवा कर रहे सारे टैली सिंगा सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो चाड़ीकरण बख्शो अरे सदा ही इस तरह अपने चरना सेवा की भावना बख्शी पालता करो कृपा करो। गरीब नवाज जी दतार जी हो अमृत वे तो लैके दर्जी आई हैं सब संगत हाजरी दर प्रमाण करो घड़िया लिखे लाओ संगत का दर्ज तेरह फुर पेटा प्रमाण शुभकामना पूर्ण करो जी धन धन गुरु ग्रंथ साहब दार पिता जी हो अद्ध चरण कामना जरदार जी दर्ज आज दर कर सेवादार बीबी जसवंत कौर आप जी बख्शिया दरता मेरे का धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद मैं लैके हाजरी दर प्रवान करो ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਦਤਾਰ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਤਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਪਾਤਰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੀ ਦਤਾਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੇਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਏਕ ਤਾ ਸੁਭਾਗ ਪਿਆ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਤ ਲੋਕ ਦਾਜ ਬਖਸ਼ੋ ਚਾਨਣ ਨਾ ਜੋੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖੇ ਦਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਜਵਾਨ ਫਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦੂਰ ਦੁਆਰੇ ਕਾਰਨ ਬੈਠੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰੋ ਘੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਦਿ ਜਾਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਚੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਵਲ ਕਰੋ ਕਾਰਜ ਵੱਧ ਬਖਸ਼ੇ ਦਾਰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਕਰਿਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਪੁਨਰ ਕਮਾਈ ਬਖਸ਼ੋ ਪਿੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮੀ ਬਖਸ਼ੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਥਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਬਿੱਧ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਰ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

ज्यों बुलावहु त्यों नानक दास बोलै वाहिगुरु जी। श्लोक महला पहला। सबे राती सब देहे

पौड़ी नाय मने हैं दुर मत गई मत प्रगटी आया नाव मने हैं हमें गई सब रोग गवाया नाय मने हैं नाम उपजय सहजे सुख पाया नाय मने शांति उपजय हर मन वसाया नानक नाम और तन है।

पावन पंक्तियां सारे गाओ, अरदास करिए सतगुरु सबना दे घरां विच सुख बन जाए, सबना दे बिघन खत्म हो जान, सब दे कारज रास हो जान।

पावन पंक्ति एक बारी सारे गाओ। महाराज ने 500-600 साल पहला ही इस ब्रह्मंड नूं इस दियां बख्शिशां नूं दस्या। साइंसदान अज थोड़ा थोड़ा जान दे। कोई कहिंदा है सत असमान ने, सत पाताल ने, पर महाराज ने कहिंदे ने तेरी गिनती मिनती तो सब कुछ बाहर है। तेनू जान जान के समझ समझ के इको ही गल समझ आई, सतगुरु तू दरिया ओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लाहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मर, तेरा किसी ने अंत पाया ही नहीं। हां जेड़े शुकर विच जुड़ गए, जेड़े तेरे विच मिलन दा जतन करते ने, फिर आप ही उन्हां नूं पता लग जांदा है तेरी बख्शिश किड्डी वड्डी है। सारा कुछ मंगदे हां, अज देण वाले नूं मंगो, दाता ही मंगदे रह गए, जो मंगिया सो पाया। कहिंदे ने जेड़े देण वाले दाते नूं ही मंग लैंदे ने ना, फिर जीवन दा मनोरथ पूरा हो जांदा है, जीवन दी यात्रा सफली हो जांदी है।

महाराज के चरणों में जो भी बैठने का सुभाग समा हासिल हो, जिमें मछली समुद्र का अंत नहीं पा सकती, सतगुरु इवें मैं तेरे पाने अंदर तेरे संसार अंदर पावे ये मात लोक है। महाराज कह रहे हैं आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नहीं माया, ये मात्र लोक है। सतपुरशां ने इनू मौत का खूह भी आख्या, कई आए कई चले गए, धरती ते इन्ने मौजूद भी नहीं जिन्ने खाक बन गए, पर तेरे दरबार विच जिन्होंने अरदास भावना बना के तेरे कीर्तन नूं गाया वो तेरे वर्गे ही हो गए। जिउंदियां जी भी सचखंड विच बह गए ते यात्रा पूरी करके भी इहां खाट चलो हर लाहा आगे वसन सोहेला हो गए, भुल चुक दी खिमा सब दी हाजरी परवान हो जाए।

चौथा काम क्रोध नगर वो भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हारली मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है रहाव साकत हर साध न जाने तिन अंतर हो मैं कंडा है ज्यो ज्यो चले चुभ दुख पावे है जम काल सह है सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा है अवनाशी पुरख पाया परमेश्वर वो शोभ खंड ब्रह मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वट वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी मोहल्ला पंजवा करो विनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां काट चल हो हर लाहा आगे वसन सुहेला औद कट है जिन सह नारे मन गुरमिल काज सवारे रहाव एव संसार विकार संसे मैं तर ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पिया मैं एहो रास अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हो हर गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो।

बोलो जी, बोलना जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुए सहाय, अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याए, जे डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमर है कारण निदावे, ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु, गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। निमाणिया दे मां नितानिया दे तां, नियोटियां दी ओट गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह, धन धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। शब्द गुरु दाता जी आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है, आप जी दे पाने अंदर चार पहर दिन सुखां दा खुशियां दा प्रतीत हो। सतगुरु जी आप जिया ने अमृत वेले तो इस वेले तक खुले दर्शन दीदार दे के निहाल किया, महाराज जी रात दे दीवाना की संपूर्णता, आप जी की सेवा संभाल, सोहला साहब जी की बाणी का जाप, आप जी के सेवक टहलिया पासों सेवा करद बेअंत फुला हो जाए ने बख्श लेना। समूह संगत की तिल फुल भेटा दर प्रवान, सब की हाजरी प्रवान, सेवादार हाजर ने निज स्थान, सचखंड पलंग ते विराजमान होवो, अमृत वेले फिर दर्शन बख्शना जी, सुख होवे नाम चितावे नानक नाम। वाहिगुरु जी का खालसा,

आपे आप निरंजन सोए। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावी है गुणी निदान। गावी है सुनी है मन रखी है पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादम।

बीजा करता सिरठी कौसा जिया पेजा न सोई क्यों कर आखा क्यों सालाही क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखन सब को आख एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का हुए नानक जी को आपो जाने अगे गया न सोए पाताला पाताल लख आगासा आगास ऊड़क ऊड़क पाल थके वेद कह निकवात सहस अठारह कहन कतिबा असलू एक धात लिखा हुए ता लिखी है लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाही ती सुरत न पाईया नदियां अतः वाह पवह समुंद न जानी है समुंद साह सुल्तान गिरह सेती माल धन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनु न विसर है अंत न शिफ्ती कह न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण किते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जा

आख पड़े करह वकियान आख बरमे आख इंद आख गोपी तै गोविंद आख ईश्वर आख सिद्ध आख किते किते बुद्ध आख दानव आख देव आख सुर नर मुन जन सेव किते आख आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे इते किते होर करे ता आख न सकह के जीवड भावै तिवड़ हुए नानक जाने साचा सोए जे को आख बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावा।

सच्चे सदा कल करोड़ सच्चे सतान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफ सच्ची साला सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह नान सत्यान सच जो मर्ज में।

रोटी टिक्का ते जमाने दान मिले चा खाई अंतर पूजा पढ़े कते बा संयम दुखा भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम लै जा तरंगा महला पहला।

मन जुठे चुल्ली परे कहो नानक सच त्याई है सच होवे तो सच पाई पूरी चित्र।

सत्मा हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड दिखै बिख काही माया मोह परम पै भूले सुत दा रासों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मलंत जम त्रास मटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरणाई।

मन तत् अविगत ते आया, गुर प्रसादी पाया, ज्ञान ध्यान सब दात कथियले, सेत वर्ण सब दूता, ब्रह्म कमल मद्दता।

सर्व दृष्ट लोचन सब अब अंतर, सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर, एका नदर सूत्र पवन सार, पवन पानी अगन तिन किया, ब्रह्मा

निरंजन राते निरभौ स्यो लिवलाय ऐ जियो नाम दृढ़हु नामे लिवलावहु सतगुर टेक टिकाई जो तिस भावै सोई करसी किरत न मिटिया जाई ऐ जी भाग परे गुर सरण तुम्हारी मैं अवर न दूजी पाई अब तब एक

जिनको कृपा तुम्हारी रहाउ। सनक सनंदन नारद मुन सेवह, अनदिन जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहलाद जन आई, तिनकी पैज सुवारी। अलख निरंजन एको वरतै, एका ज्योत मुरारी। सब जाचक तू एको दाता, मांग है हाथ पसारी। भगत जना की उत्तम बाणी, गाव है अकथ कथा नित न्यारी। सफल जन्म भया तिनकेरा, आप तरे कुल तारी। मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी। संत जना की कथा न पावे, हुए डूबे सन परवारी। निंदक निंदा कर मल धोवे, ओह मल पख माया धारी। संत जना की निंदा व्यापे, ना उरवार न पारी। एहो परपंच खेल किया सब करतै, हर करतै सब कल धारी। हर एको सूत वरतै जुग अंतर, सूत खिंचै एकंकारी। रसन रसन रस गावह हर गुण, रसना हर रस धारी। नानक हर

मोह मिथन दुरंत आसा वासना विकार रख धर्म भर्म बिदार मन ते उधार हर निरंकार तनाड़ आड़ भंडार हर निद होत जिना ना चीर खल मुगद मूड कटाख श्री धर भय गुणमत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान प्रसन्न प्रभ नानक।

जो हार सुख पर हर त्याग दे, दुख होमे पाप कमाए। मन मुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ न काई पाए। हालत पलत कोई

ભોજાપુરા ચુકાની ખેમાજી इस गुरु घर ने ऐसा अच्छा माहौल सिरजिया और सतगुरु पातशाह दे पहले प्रकाश पुरब मना रहे ने उस करके संगतां सारियां प्रसन्न चित होके उही सबक दोहरा रही ने जो कलगीधर पातशाह ने सानू दिता सी गुरु मान्यो ग्रंथ और खोज शब्द में आओ सारे साडियां भुलाना चितारना सीस देना फतेह दी सांझ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।